सुख राजे हरि चंद्र घर नार सतारा लोचन रानी साध संगत मिल गाव दे राती जाए सुने कुर्बानी। राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड़ी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु दी कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे, जे अंब दे ब्रिश ते बैठा तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा, जे सत संगत विच जांदा तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी दा कीर्तन सुनना आनंद मानना, क्योंकि ए भी आत्मा दी खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक दी लोड़ है, साडी आत्मा नू भी परमेश्वर दे नाम दी लोड़ है। ओ नाम दा भोजन छकदी है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन दी भुख लगदी है। पर ओ भोजन नाम दा छकदी है। उच्चारण करो श्री तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तां की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए तां उस तरह एवें किसे नू कलंक लाउना या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह छान बीन कर लेनी चाहिदी है भई किधर जांदी है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया ते राणी ने समझा भई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है, राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं प्रयास आया भई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदे, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाऊं चुक के घर ले आंदी। भई पुछांगे भई तेरी दूजी खड़ा किथे है, ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नूं बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी, जदों पुछेगा भई दूजी खड़ा किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाऊ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री वाहे। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है या नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठया
ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ।

हम बन बन जाओ और नैया कारण कारण कमन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जो जन्म तुम्हारे लेके सर्वदास आस

0: ठेक है क्या गुण तेरे शाश माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गरवास ना पड़े।

आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परियो रामदास, नाम परियो रामदास, हो दीन दयाल कृपा।

तुम्हारे आप परमेश्वर कहायो। पाठ अपने इस शब्द के धन गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं, लिखते हैं वो जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है, कोई किसे नाम दे नाल, वो हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक का नाम लैके प्रगट होए। उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने, आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह ने ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नू मिलनी।

जी दे जिहड़े दूसरे भरा सन उन्हां दे लड़के दे नाल व्याहे होए सन। बीबी अमरो कहन लगे, पिता जी मेरे पिता गुरु अंगद साहब खडूर साहब रहिंदे ने, मैं आप दे नाल जरूर चलांगी पर मैं तां जा सकती हां अगर मेरे सास सहुरा और मेरे पति इजाजत देंगे। सत्संग एक गल ध्यान विच रखें, अजकल घरां विच कलेश और दुख इसे वास्ते नहीं कि घरां दे असूल घरां दे नियम खत्म हो रहे। वड्डियां दी इज्जत, वड्डियां दा आदर करना, उन्हां दा कहा ना मनना ये आम हो गया। हुण इत्थे देखो, बीबी अमरो गुरु अमरदास नूं कह रहे ने, पिता जी जदों तक सस सहुरा इजाजत ना देण, पति इजाजत ना देवे, मैं पेके घर किस तरह जा सकदी हां। फिर जदों तक पेके घरों कोई संदेशा ना आवे, पिता दा कोई समागम ना होवे, मैं किस तरह जा सकदी हां। अपने गृहस्त जीवन विच जे आपा सुखी वसना है तां इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना पवेगा। वड्डियां दी आग्या, वड्डियां दा कहना मनना फर्ज बनता है, पर नाल इक गल इह भी है कि वड्डियां नूं भी छोटियां दी भावनावां दा ख्याल रखना चाहिए। दोनों पासे प्यार होवे तां जीवन दा आनंद कुछ होर हुंदा है। अमरदास कहन लगे, बेटा तेरे सस सहुरे मैं पुछ लैना, तेरे पति कोलों इजाजत भी मैं लै लवांगा, ते तुहाडे पिता गुरु अंगद साहब दे चरणां ते सिर रख के मैं उन्हां नूं मना लवांगा कि बीबी अमरो नूं मैं लैके आया क्योंकि मैं गुरु वाला बनना। इस तरह अमरदास जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अमरदास कहने हैं अपने पिंड तों खडूर साहब चल पए। जद खडूर साहब पहुंचे, गुरु अंगद साहब संगतां दे नाल बैठे होए, दूरों तक लिया कि साडा कुड़म अमरदास आ रहा है, क्योंकि भरा दा भरा भी कुड़म ही मनिया जाता है। गुरु अंगद साहब ने आसन दिता कि साडे कुड़म दा भरा कोई भी कुड़म ही लगा कुड़म आया। जद सिंघासन दिता बैठण वास्ते ता अमरदास ने हाथ जोड़ के चरणा ते मत्था टेकिया ते चरणा दे कोल ही बैठ के कहन लगे, पातशाह मैं कुड़म बन के नहीं आया, सेवक बन के आया, अपने चरणा विच देओ जगह, सिख बनाओ, अपना सेवक बना लो। उमर अमरदास दी ओ है जिन्हों आपा कहने बुढ़ेपा, उस उम्र विच आके सेवा की थी। लंगर च भांडे मांजे, लंगर पकाया, झाड़ू फेरिया और कठिन सेवा लई रोज सवेरे कुछ मील चल के ब्यासा दरिया से जांदे ने, पानी दी गागर भर के फिर वापस आके पैदल गुरु अंगद साहब नूं रोज इशनां

करती रही। हुण सेवा परवान होण दा समा आया। रोज की तरह अज भी अमरदास जी पानी की गागर सिर ते चुकी हुई प्यासा दरिया पहुंची। मन की भावना कैसी? पहला पानी की गागर दरिया विच भर दे, उस गागर नूं सिर ते चुक के फिर आप इशनान करते हैं, ते फिर वापस खडूर साहब आते। ये कुछ मीलों का सफर रोज पैदल तय करते। अज जद पानी की गागर लैके वापस मुड़े, दो तीन बजे का वेला रोज की तरह आ रहे ने। पैर नूं ठोकर लगी, अमरदास जी थले डिग पे। अपनियां सट्टां दी परवाह ना कीती पर पानी दी गागर ना डिगण दित्ती, क्योंकि गुरु नूं इशनान कराना है। कोल जुलाया दा घर सी, डिगण दा खड़ाक होया। जुलाया घरवाली नूं कहण लगा, खड़ाक होया कौन हो सकता है? अद्धी रात का वेला है, इस तरह लगता जिमें कोई डिग है। जुलाई की घरवाली जुलाई कह लगी, कौन हो सकता है इस वेले? इको ही तो है अमरू नी थावा जड़ा रोज रात को इथों पानी लैके लंघता है बुढ़ा, पर रात को भी चैन नहीं। कोई टिकाणा होता ते टिक के बहिंदा, ए निथावा है इहदा कोई थां नहीं। जुलाई ने जदू ए गल कही, ए अमरू निथावा है, ते अमरदास जी हस पे। हसदिया होया सहस बा बचन कीता, चली ना होवे पागल ना होवे, इनू की पता कि मैं थां वाला, मैं निथावा नहीं। मेरा थां तो गुरु नानक है, मेरा थां गुरु अंगद है, मैं तो गुरु वाला वा, मैं निथावा कितने? ये बचन कहते हैं। पानी की गागर लैके गुरु दरबार आ पहुंचे, अपने गुरु नूं इशनान कराया। पर अज कुछ नजारा हो रही हो गया, उधर जुलाई चली हो गई, जिसने कहा से अमरू निथावा है। क्योंकि महापुरुषों के बचन सह सुभा होते ने और वो बदलते नहीं। अज वो गुरु अंगद साहब जिन्हां दी सेवा अमरदास जी करया करते सन, उन हैरान कर दिता दुनिया नू। जद अपने सेवक अमरदास नू कहा, अमरदास तुसा बड़ी सेवा कीती, तुहाडी सेवा प्रवान हो गई, हुण जिस सिंघासन ते गुरु अंगद साहब बैठा करदे सन उत्थे अपने सेवक अमरदास नू बिठा दिता। पांच पैसे नारियल लगे रखिया, परिक्रमा कीती, गुरु अंगद साहब ने अपने सेवक अमरदास की परिक्रमा करके फिर गुरु ने आप अपने सेवक नु मथा टेक दिता। टेके अमरदास, हुण तू सेवक नहीं, हुण तू गुरु नानक का रूप हो गए, हुण तू गुरु है ते मैं तेरा सेवक हाँ। इन्ने नु ओ जुलाया भी अपनी घरवाली नूं लैके आ गया, महाराज ये भुल गई, इनू बख्श दिओ। तां गुरु अंगद साहब कहण लगे, भाई गुरु नानक दा दर बख्शंद है, तेरी घरवाली ने कहा सी अमरू नी थावा है, पर हुण देखो ये थां वाला है।
ਇਹੋ ਹੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਨ ਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਜੂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਗਦੀ ਇਹ ਜੋਤ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास तो ए गुरुगति

भाई जेठा प्यार दे नाल घर वाले जेठा क्या करते सन। गुरु अमरदास जिन्हां ब्यासा दे किनारे गोविंदवाल शहर वसाया संगतां दे नाल भाई जेठा भी गोविंदवाल साहब आए सेवा करन लग पे। इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा के गुरु अमरदास जी ने अपनी सुपुत्री पानी दा व्याह भाई जेठा रामदास जी दे नाल कर दिता। गुरु घर दे सेवक ही रहे, जवाइयां वाली प्रौणियां वाली आकड़ नहीं दसती। समा बीतदा रहा, गुरु अमरदास जी दे दो जवाई सन, एक रामा जी एक गुरु रामदास। गुरुगद्दी देण दा समा आ रहा है, पर गुरुगद्दी ए निजी जायदाद नहीं, इलाही दास है। एक दिन गुरु अमरदास ने रामा जी ते गुरु रामदास दोनों नु बुला के कहा, भाई दो थड़े बनाओ पर बहुत सोहने बनने चाहिए। सारा दिन ला के रामा जी अते गुरु रामदास ने बड़े सुंदर थड़े बनाए। शाम दे वेले गुरु अमरदास आए, थड़े देखे ते कहन लगे थड़े पसंद नहीं आए, ढा के दोबारा बनाओ। थड़े ढा दिए। दूसरे दिन फिर बड़ी मेहनत करके बड़े सुंदर थड़े बनाए। शाम नूं गुरु अमरदास फिर आए, कहन लगे थड़े चंगे नहीं बने, ढा के फिर बनाओ। दूसरे दिन भी थड़े ढा के, तीसरे दिन फिर थड़े बनाए। तीसरे दिन गुरु अमरदास फिर आए ते कहन लगे थड़े अज भी ठीक नहीं बने, इन्हां नूं ढा के फिर बनाओ। तारामा जी खिज के कहन लगे, असां तां थड़े बड़े सुंदर बनाए, बड़ी मेहनत दे नाल, पर आप जी नूं पसंद नहीं आते। आप जी दी उम्र वडेरी हो गई है, चंगी चीज भी चंगी नहीं लगती, मैं तां इस तों अच्छा होर नहीं बना सकदा, इह कह के चले गए। ते जद गुरु अमरदास ने भाई जेठा रामदास नूं कहा, रामदास थड़ा तेरा भी ठीक नहीं बनया, ढा के बनाओ। तां रामदास जी हाथ जोड़ के गल विच पल्ला पा के कहन लगे, दाता साडी मत बड़ी थोड़ी है, साडी समझ बड़ी छोटी है, सच्चे पातशाह हुणे ढा देंदा ए थड़ा, आप जी जिस तरह हुक्म करो उस तरह फिर थड़ा बनावांगा, क्योंकि सेवक का काम है हुक्म मानना, जिस तरह हुक्म करो सेवा करांगा। यह है हुक्म मानना, सेवा करनी, हुक्म मनिया, सेवा की, गुरु की खुशी मिली। तो हुण गुरु ने कितनी कृपा की, रामदास नु उस सिंघासन ते बिठा दिता जिथे आप बैठा करते सन। परिक्रमा की थी, हुण रामदास दे चरणा ते आप मत्था टेकिया ते रामदास नु गुरु रामदास बना दिता। सेवा सिमरन और हुक्म मनन दा ए फल मिलिया कि रामदास गुरु रामदास बन गए, जिन्हां ने अमृतसर साहब शहर वसाया, जि
जी ते सरोवर बनिया हरी मंदिर बनिया ते जेड़ा भी उसे इशनान करता है जदू भी वह गल कहता है इशनान करता है तो ओदे मुंह तो अपने आप ही निकलता है रामदास सरोवर नाते।

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरण आई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। ही हैज गिफ्टेड मी विद द बाम ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड आई हैव एनश्राइंड लव फॉर हिम विद इन माई सेल्फ। The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

भाई शाह भाई गुरदास जी, अकाल पुरख वाहेगुरु अगे अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, हाँ अपराधी गुनाहगार। कोई भाई गुरदास जी अपराधी नहीं सन, पापी नहीं सन, क्योंकि जिसने सच दे मार्ग ते चलना है उसनू निम्रता धारण करनी पड़ेगी। जे किसे जपां तपां दा मन विच हंकार आ जावे तां ओ जप तप कीते होए निष्फल हो जांदे हन। इसलिए जिसने इस मार्ग ते कदम रखिया है उसने सब तो पहला निम्रता धारण कीती है। भाई साहब श्वास श्वास बंदगी करदे सन, श्वास श्वास जपदे सन, ते फिर सारा जीवन उन्होंने गुरु चरणा विच रह के अनेकां जीवां नूं गुरु नानक दे दर नाल जोड़िया है। एडी मान महान हस्ती होंदिया होया भी भाई साहब कहंदे हन हों अपराधी। आज जो तुसी शब्द सरवण कर रहे हो, गल्ली असी चंगियां, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा यह शब्द है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी अकाल पुरख वाहेगुरु अगे ये अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, गल्ली असी चंगियां, असी गल्लां करके तो बड़े चंगे बनन दा जतन करते हां, पर ऐसे हां नहीं। हे वाहेगुरु, असी अपने आप नूं बहुत कुछ समझते हां, पर ओ गल साडे विच है नहीं। गल्ली असी चंगियां, गल्लां असी बड़ियां ज्ञान दियां करदे हां, पर आचारी बुरियां। असल विच असी मारे पासे जा रहे हैं। मनो कसुद्धां कालियां, मन माड़े पासे दौड़दा है, ते गल्लां असी चिते हुण दियां करदे हां। हे वाहेगुरु, तेरी बख्शिशी सानू तार सकदी है, तेरी रहमती तार सकदी है। और भाई साहब गुरदास जी कहंदे हन, मैं तो रोम रोम गुनाहगार हां। हे वाहेगुरु, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ की महान हस्ती हुए हैं। आप जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह ने कलयुगी जीवां नूं तारन हित गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की, उसके लिखारी हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। सिख पंथ के वेद व्यास होंदे हुए भी आप कहंदे हन हों अपराधी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। एक वेरां दा जिक्र है, भाई साहब गुरदास जी जा रहे हन ते पिछे बहुत संगत जा रही। किसे ने वेख्या भाई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर इतनियां संगतां जा रही हन, तां पुछन लगा भाई ये कौन साहब हन। भाई साहब गुरदास जी ने एक गल सुन ली ते आप उस प्रेमी दे पास आ गए जिसने पुछया सी भाई ये कौन साहब हन। भाई साहब कहन लगे, भाई जे कुछ मेरे बारे पूछ रहा है तो इना नू ना पूछ, मैनू पूछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या है ते मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां जो कुछ मैं हां। असी भी अपना परिचय कराउंदे हां ना, कोई पूछे भाई तुहाडी क्या तारीफ है, ते किड्डे चंगे चंगे शब्द लभ के अपने लई वरतदे हां। और भाई साहब नूं जदों पुछया गया तां भाई साहब कहंदे हन, भाई इन्हां कोलों ना पुछ, जे मेरे बारे कुछ पुछना है तां मैनूं पुछ, क्योंकि इन्हां ने मैनूं बाहर मुखी वेख्या, मैं अपने अंदरले नूं भी जानदा हां। आख्या जी तुसी दस दिओ, तां भाई साहब कहण लगे, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा।
ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਗਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਖੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ।

कोई हो जाए नहीं। जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना तरिया होवे। जापहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी उड़ियाई कर रहे हैं।

सारे लोग आखन लगे भी ये बच्चा बड़ा ही कर्महीन है। हर कोई नफरत करन लगा। भैन भरा रिश्तेदार सारे ही बोल कबोल बोल दे नी जदों दा तू जन्म लिया है ते घर विच घाटा ही घाटा है। तुर नहीं सकदा हथा ना कुछ कर नहीं सकदा कोई तेनू किन्ना चिर खुआवेगा। रोज बोल कबोल बोल दे नी तू बड़ा ही कर्महीन है। अज इस बच्चे कोलों सुनिया ना गया हर रोज दियां गल्लां सुन के अज तंग आया आखन लगा मैं तुहाडा दिता नहीं खांदा। ओ प्रभु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा है मैं वाहिगुरु

दिन बीतया रात बीती फिर दिन आया उस मालक दी बख्शिश होई आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने। अचानक बच्चे वल निगाह पई आखण लगे ओए बच्चिया इना उदास ते नाराज क्यों बैठा है प्रभु दा नाम जपया कर प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखा दूर हो जांदे ने राम राम जपया कर राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखा सारियां ही मुक जांदियां ने अनार दी इनी गल करके तुर गए ने बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया सिमरन विच जुड़ गया ते की सोची मिलती है किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गए किन्ने महीने बैठा रहा आज किन्ने महीनिया बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए हुण ते पिंगला नहीं दे रहा अजदों इसने कुछ तकिया ना ए प्रभु तू किड्डा दयालु है तू किड्डा कृपालु है सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है अज ते तेरियां बख्शिशां अज ते तेरे

जेदे पले नाम है दुनिया दे सुख ओदे मगर मगर टुरे फिरदे ने। सतगुरु बाणी विच आख रहे ने लोक परलोक दे सुख ओदे मगर टुर पैंदे ने जेड़ा हिरदे विच नाम बसाउंदा है। अज की होया राजा बिरद होया ते ए जवान होया राजे ने इस बच्चे नू राज गद्दी ते बिठा दिता है। जेड़ी दुनिया सारी इस दे नाल नफरत कर दी सी पिंड नगरी वाले भैन भरा जेड़े एडे धक्के मार दे सन अज सारे इस नू एक बार मिलन दी खातर दरवाजे ते खलोते तरले कर

एक महापुरुष इस बरसात विच तुरे जा रहे ने ते की देख रहे ने और सामने एक घर दिस रहा है। बरसात तो बचन लई इस दरवाजे दे कोल जाके खलोते ने भी ये घर किसदा है बेसवादा है। महापुरुष बाहर खलोते बरसात हो रही है सर्दी दी रुत है कंब रहे नी ते गनका नी दरवाजा खोलिया बाबा जी अंदर लंघ आओ अंदर लंघ आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने नस के अंदर गए सतपुरख आए ने सेवा कर लवा नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई बाबा जी छक लगो। महापुरुष आखन लगे बची तेरा काम की है की किरत कर दी है। बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है मैं कर्मा दी मारी बेसवा आखन लगे बच्ची आ तेरे हथा का दुध असा ने नहीं पीना इन्नी गलाखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए क्यों नहीं पीना तेरा कर्म माड़ा है जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां इह दुध का गिलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नूं तारन वास्ते आंदे ने बाबा जी तुहाडी हर एक गल मन्नांगी। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे दे विच

राम बोलेंगी इवी बोलेगा, इनू राम राम सिखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरुषां ने दुध सकिया, हुण महापुरुषां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहा बख्शां होईआं, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। ते ए है प्रभु दे नाम दी महिमा, सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने। जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन, नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

सैव जी कहन लगे कि जोगा आखो सतनाम श्री वाह कि जोगा है तू कोई मां प्यो जोगा होता है कोई अपने आप जोगा कोई दुनिया जोगा कोई देश कौम जोगा तू कि जोगा जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछा बच्चे दे कर्म देखो।

डायरेक्ट के रहना चाहिए था। जेड़ा होते भय विच रहता है सुखी रहता है ते जेड़ा होते नाल दावे करे जेड़ा उहदे नाल गिणतियां गिणे ओ फिर सुखी नहीं रहता। गुरु ने इम्तिहान पाया जोगा सिंह घर पहुंच गया और सिर्फ भी चिट्ठी लैके पिछे पिछे पिशौर जा पहुंचे। जोगा सिंह की बरात तुरी सिख भी नाल लड़की वालियां दे घर पहुंचे मिलनी हो गई सारिया रस्मां हो गई हूं आनंद कारज का वेला हो। जोगा सिंह लावां लै रहे है ते उस सिख ने वो चिट्ठी जोगा सिंह दे हाथ फड़ाई जोगा सिंह लै भाई कलगियां वाले पिता दा ए सुनेहा तेरे वास्ते। प्यार बहुत सी जोगा सिंह दे मन विच बहुत श्रद्धा सी कलगियां वाले पिता वास्ते। गुरु दी चिट्ठी देखी मथे ना लाई चिट्ठी चुमी चिट्ठी पढ़ी ओ जोगा सिंह तेरी बड़ी लोड़ है बैठा है ते उठ पो खड़ा है ते तुर पो। ते जोगा सिंह ने लावां विच छड़ दिती घर वालिया ने कहा जोगा सिंह तेनू रोकदे ने चला जावी पर लावां ते पूरियां लै ले। कहन लगा नहीं मेरे कलगियां वाले पिता दा हुक्म है जोगा सिंह तुर पै ते मैं हुण रुक नहीं सकदा। सात संग यह है जोगा सिंह दा प्यार गुरु दी चिट्ठी पढ़ी लावां विचे छड़ के जोगा सिंह तुर पिया सफर करदा होया हुशियारपुर आ पहुंचे शाम दा वेला सी। जद हुशियारपुर पहुंचया ते मन विच हंकार आ गया जोगा सिंह अपने आप नूं कहिंदा है ओए जोगा सिंह तेरे वर्गा कोई सिख हो सकदा है जिहड़ा गुरु दा हुक्म सुन के लावां छड़ के तुर आवे। हंकार आया ते मन दे विच मैल भी आ गई। उठिया जोगा सिंह रात पै गई है वेसवा दे चबारे वल तुर पिया। जद गुरु नूं भुलाने आ ते फिर इंसान किथे तक जा डिगदा है किथे ओ जोगा सिंह जिहड़ा गुरु दा हुक्म मन के लावां छड़ के तुर पिया पर जद मन विच हंकार आया ते फिर किथे तक जा पहुंचिया वेसवा दे द्वारे वल तुर पिया। जद वेसवा दे चबारे कोल पहुंचिया जोगा सिंह ते भुल गए गुरु नूं पर गुरु ने जोगा सिंह नूं नहीं भुलाया। सात संग गुरु नानक दा रूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक चौकीदार दा रूप बनाया हाथ विच एक कुंडा पकड़िया ते वेसवा दे

चौकीदार खड़ा देखे आ, थोड़ी जी संगा आई ते जोगा सिंह आगे चला गया। चक्कर कट के आना, पहरेदार हट जाएगा, फिर वेसवा दे चुवारे चढ़ागा, पर साध संगत कौन है चौकीदार? कलगियां वाला साधु जेड़ा आया ही रखिया करने वास्ते है।

जोगा सिंह चक्कर कट के आया और वो पहरेदार हाल भी खड़ा। फिर जोगा सिंह मुड़ गया, फिर चक्कर कट के आया पर पहरेदार दे हटदा नहीं। चक्कर कटदे हैं अमृत वेला हो गया, ना ते जोगा सिंह मुड़िया ते ना गुरु साहब जी हटे। हुण जोगा सिंह ने मन विच सोचिया पहरेदार दे हटदा नहीं, मैं क्यों ना चबारे चढ़ा। जोगा सिंह ने हिम्मत की, जद पौड़ियां चढ़न लगा ते हुण गुरु साहब तू बर्दाश्त ना होया, एक तबका मारे हैं। ओ सिंगा किथे चले हैं, जापदा गुरु दा सिंह है तू, सोना दाड़ा सिर ते दस्ता हाथ विच कड़ा गात्री कृपा तेड़ कशहरा पाए है, ओ जापदा गुरु दा सिंह चलिया वेसवा दे द्वारे। जा भज जा सोटा मारांगा तेनू, ओ जा जाके बाणी पढ़, बाणी पढ़न।

आओ, अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए, गवाइए ना। आपसे ईर्खा दुर्दा, आपसे नफरत छड़ के, छोटिया मोटिया गल्ला छड़ के, मना विच प्यार रखिए और सच जानना, जिना हिरदा विच प्यार नहीं, जिना दे मना विच प्यार नहीं, उना दे करा विच प्यार नहीं, जिन करा विच प्यार नहीं, वो कार नहीं, वो फिर शमशान होते हैं। क्यों? कार चंगे समान ना, चंगे फर्नीचर ना, चंगे साख मरमर लगाने नाल घर नहीं बनता, घर बनता है प्यार ना, इतफाक ना। घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है, घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है, घर वो है जिथे नाम बाणी का प्रवाह चलता है, घर वो है जिथे एक दूसरे नू जी कह के बुलाया जाता है, घर वो है

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं सतगुर।

भाई साहब भाई गुरदास जी इस वार दे विच गुरमत दे छे नियम दस रहे हैं कि गुरमत की है, गुरसिख कौन है।

निमरता धारण करनी। गरीबी तो भाव किसे कंगाली या भुखमरी दा नहीं लेना। गुरु नानक दे दर ते निमरता नू गरीबी आख्या गया। सेवा सिमरन परपकार करदिया होया भी मन विच हंकार ना आवे, मन विच किसे गल दा गर्व ना आवे, ए है निमरता। भाई साहब कहिंदे हन पहला नियम गुरमत दा है निमरता धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। एका नारी जति है पर नारी ती भैन वखाने, वेख पराइयां चंगियां मामा भैणा तियां जाने। ऐसा गुरसिख दा पवित्र जीवन है।

फुल चढ़दा क्योंकि हजूर दी बाणी कहंदी है निंदा भली किसे की नाही ते कौन करदे हन मन मुख मुगद करन मुंह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। इसलिए गुरु का सिख ना किसे दी निंदा करदा ना निंदा सुनदा है।